जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेर उपावह डुबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै भीतर वगै काती परणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परण

नानक होशे ते सच गुरपुरै मेरी राख लई गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मह दीनो जन्म जन्म की मैल गई।

सतगुरु तेनू छड़ के नहीं, ते सतगुरु ने बचन किया बुढ़िया जा मैं तेरे नाल अज बचन करना वा, तेरे तो ओले कदे ना होसा, मैं किसे भी रूह विच होवांगा पर तेनू पता होवेगा मैं किथे टिकिया होया वा। पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है, तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना होसा। बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए, ते जिदन भाई लैणे नू गुरगद्दी दिती, लैणे तो गुरु अंगद बने, पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने कीती। उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई, उन्हें एक शब्द कहा सी, दाता ले गद्दी ता सेवक नू मिल गई पर पुत्रां दा की बनेगा, इन्हां दा प्रसाद पानी। ते गुरु साहब ने जेड़े बचन कह, कवि संतोख सिंह ने गुरु प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने, कह लगे सुलखनीए आ गुरु दा दर ऐसे ही, एदे दर ते बैठे हुए कुत्तियां दे पैरां विच भी करामाता होणगियां, ए ते मेरे पुत्र ने, इन्हां दी क्यों नहीं लोग सुनगे। उत्थे इक शब्द क्या, कहन लगे ए बाबे के होणगे, बाबा श्री चंद ते लखमी दास ए बाबे के होणगे, ते जोत जिहड़ी गुरु अंगद साहब दे कोल होवेगी। उत्थे शब्द क्या, गुरु घर के जे होए सुवाना, जिहड़े गुरु दर दे कूकर होणगे, तिनको पूजा सगल जहाना, लोग उन्हां दी पूजा करनगे। अज गुरु नानक साहब जी तो जदों जोत भाई लैणे विच टिकन लगी, ते विच विचोला कौन बन गया है, बाबा बुढ़ा जी। पहला तिलक गुरियाई दा भाई लैणा जी नूं बाबा बुढ़ा जी ने लाया, गुरु नानक साहब नूं नमस्कार कीती बाबा बुढ़ा जी ने, फिर साहब ने कहा बुढ़िया मैनू हुण छड़ के तू नमस्कार गुरु अंगद साहब दे चरणा विच कर। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक साहब तो बाद मत्था टेकिया। भाई लैणा जी नूं गुरु अंगद साहब नूं हुक्म हो गया, क्योंकि गुरु इतिहास नाल तुरेगा बाबे बुढ़े दे, बाबे बुढ़े दे जीवन नूं नाल तुरन लई गुरु इतिहास वाचना पएगा। कहन लगे भाई लैणे नूं गुरु अंगद साहब नूं, तुसी हुण करतारपुर टिकना नहीं, तुसी खडूर चले जाओ। बाबा बुढ़ा जी पिछे करतारपुर टिके। गुरु नानक साहब तो बाद गुरु अंगद साहब जी खडूर आए, इत्थे माता विराई दे घर दे अंदर आ के टिके। इस माई दा पेका पिंड सी मत्ते दी सरां, मत्ते दी सरां दा हाकम सी जेड़ा चौधरी सी, उहदा नां सी तख्त मल, इहदी धी सी। माता विराई दा असली नाम सी वीरां बाई, इहदे सत भरा सन, ते लोकी आम तौर ते इहनूं सत भराई भी कहिंदे हुंदे सन। इस माता विराई दा आनंद कारज खडूर दे जिमीदार नाल होया, चौधरी नाल होया। माता पिराई ने गुरु अंगद साहब दे पिता बाबा फेरू मल नूं सक्का भरा बनाया सी, ते गुरु अंगद साहब माता विराई दे घर आ के ना पहला गुरु नानक साहब दे दर्शन भी कीते सन। अज जदों गुरगद्दी जोत मिली, माता विराई दे घर आए, जिहड़ी रिश्तेदारी करके भैण भी बन गई, वैसे भुआ लगदी सी पर वीर शब्द इन्हें गुरु अंगद साहब लई भी वरत्या। पर जिदन गुरु जोत मिल गई, उदन वीर नहीं उदन गुरु नानक जाने। अंदर गुरु अंगद साहब टिक गए, प्रेम दा विछोड़े दा सल सी। बाहरों सारे इतिहासकार सहमत ने कि माता विराई ने दरवाजा ला दिता, अगों दरवाजा चिण दिता, ते इतिहासकार कहिंदे ने संगत बेबल हो गई। जेड़े नाम ते पुजारी ने गुरु नानक साहब दिसे नहीं, एक एक तो पुछदे ने गुरु अंगद साहब कोल गुरु जोत है पर गुरु अंगद साहब हैन किथे। माता विराई नूं कहा तू दसना नहीं किसे नूं, गुप्त वास हो गए। सिख संगतां थां थां ते गईयां, भाई अजिता रंधावा इहदे मन विच वी बड़ा चाओ गुरु कित्थों प्रगट होवे। जदों संगत नूं गुरु ना लभिया, उस वक्त एक ने क्या कहन लगे भलियो भटको ना, चले जाओ बाबे बुढ़े दे कोल रमदास, ओनू गुरु नानक इक बचन दे के गया बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना होसा, केवल बाबे बुढ़े नू पता है गुरु नानक दी जोत किथे टिकी हुई। शब्द बड़ी प्यारी पंक्ति सी, तेरे तो ओले कदे ना होसा। संगत पहुंची रमदास, बाबा बुढ़ा जी खेतां विच काम पै करदे ने, जाके कहन लगे महापुरशा विछ

बड़ा अदब कीता, कह लगे माई तेरे घर गुरु टिके है। माता विराई दे शब्द संग पाई वीर सिंह लिख देने, कह लगी तुहानू किने दस्या मेरे घर गुरु वे। ते बाबा बुढ़ा मुस्कुरा के कह लगे माई तेरे चेहरे दा नूर दसदा पै के तेरे घर विच गुरु वे, तेरे चेहरे दी रौनक दसदी है तेरे घर गुरु वे, क्योंकि जितना मर्जी तू लकाले क्योंकि तेरे नाम का रंग बोल के कहिंदा तेरे घर दीन दुनिया का खजाना। कह लगी बाबा तू सब कुछ समझना पर मैनू अपने गुरु के हुक्म विच पाबंद रहन दे, मैनू हुक्म नहीं मैं जबान खोला। बाबे बुढ़े ने पहली जुगत दसी, कह लगे सिखो गुरु प्रगट करना जे, कह लगे हां ते रबाबिया नू क्या रबाब छेड़ो ते बाणी पढ़ो गुरु नानक दी। कदी सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि गुरु नानक दी बाणी सुन के गुरु अंगद पाशाह बाहर ना आवे। बाणी दा अदब कितना, गुरु दी बाणी सुन के गुरु अंगद जरूर बाहर आवेगा। जदों रबाबिया ने शब्द छेड़िया मैं मन जारन राम की तेरा नाम वखर व्यापार जियो, जदों प्रेम नाल भिजे शब्द निकले ते उस वक्त कहिंदे किवाड़ खुलिया गुरु अंगद साहिब बाहर आ गए। ते बाबे बुढ़े ने उच्ची आवाज किया संगते गुरु नूं जदों भी प्रगट करने बाणी दा आसरा लई क्योंकि बाणी दे विच गुरु प्रगट हुंदा। रमजा पांदे फैशन के आने वाले समय विच ए करने जदों गुरु अंगद साहिब बाहर आए ते बाबा बुढ़ा जी ने नमस्कार पहली कीती, कहन लगा बाबा सतगुरु इस संगत विछड़ी नूं अपने नाल जोड़, क्यों तुसी अंदर ते गए हो, इस संगत नूं कौन सांभेगा। कमाल दी गल मेरे गुरु अंगद साहिब दे नेत्रां विच नीर सी ते मुख विचों जिहड़ा पहला शलोक निकलिया ते गुरु ग्रंथ साहिब दी श्री राग की वार विच गुरु अंगद साहिब दा पहला ही शलोक है। पुछया सतगुरु अंदर क्यों टिके हैं, ते नेत्रां विच नीर भर के क्या बुढ़िया जिस प्यारे सिउने हो तिस आगे मर चलिया, त्रिग जीवन संसार तां कै पाछे जीवना, पर क्या सतगुरु इनू तेरे तो बिना आसरा नहीं संगत नू। बाबे बुढ़े ने विछड़ी हुई संगत नू गुरु नाल मिला दिता ते फिर हाथ जोड़ के क्या सतगुरु अपने इस बच्चे नू कोई हुक्म दियो, मेरे प्रति की हुक्म है। ते सतगुरु गुरु अंगद साहिब ने शब्द कहे सन, कहन लगे बाबा तिनको क्या उपदेशिया जिन गुरु नानक देव, किन्नी कु किरपा होगी होवेगी। गुरु अंगद साहिब ने कहा की उपदेश करा तेनू जिनू गुरु नानक किरपा देगी। गुरु अंगद साहिब दा समा लंघिया ते बाबा बुढ़ा खदूर टेक गया, बाबे बुढ़े नू सेवा दिती गई गुरु की लंगर विच माता खीवी दे नाल। बाबे बुढ़े ने रज के भांडे मांजे, रज के तप्पड़ झाड़े, गुरु अंगद साहिब दे चरण परशे। अज जिदन बाबा अमरदास आ गए ने ते गुरगद्दी गुरु अंगद साहिब तो गुरु अमरदास को जानी है, ते अज फिर आवाज दिती कि बाबा बुढ़ा जिवें लैण गुरु नानक तो जोत लैणे विच आई ते अज गुरु अंगद तो जोत गुरु अमरदास अंदर जानी है, पर गुलियाई दी तिलक जेड़े ने बाबा बुढ़िया तू ही लाना। किन्ना समर्थ होवेगा सिख। सतगुरु ने बुलाया, बाबे बुढ़े ने अपने हाथ नाल गुरु अमरदास जी नूं तिलक लाया ते उस वक्त गुरु अंगद साहिब ने कहा अमरदास ए भारी सिखी इनू अपने कोल रखी। गुरु अंगद साहिब जी जदों शरीरक चोला त्याग गए गुरु अमरदास गोइंदवाल आ गए ते बाबा बुढ़ा खडूर तो गुरु जोत नाल गोइंदवाल आ गए। गोइंदवाल जिदन उच्ची जात वालिया ने पानी ना भरन दिता, सिखां दे घड़े भन दिते, मशकां नूं तीर मार के पाड़िया ते उस वक्त सवाल उठिया पानी कित्थों लैणा है, ते बापू गुरु अमरदास ने कहा बौली विचों, ते साध संगत सवाल उठिया बौली दा टक कौन लाएगा। बाबा बुढ़ा भांडे पिया माईदा सी ते गुरु अमरदास ने बांह पकड़ के कहा, कहन लगे गुरु नानक दे प्यारिया आ जुगो जुग अटल बौली रहनी है ते इस बौली नूं टप मैं तेरे हत्थां नाल लवाना। गोइंदवाल दी बौली दा टक बाबा बुढ़ा जी ने लाया, सेवा करते रहे। इथों तक विद्वाना ने खोज कर दिती जेड़ियां 22 मंजियां थापियां। गुरु अमरदास जी ने बाबे बुढ़े नूं कोई मंजी नहीं दिती, पर भाई वीर सिंह लिखते ने 22 मंजियां दे प्रचारक हर 6 महीनिया बाद बाबे बुढ़े नूं आके रिपोर्ट देंदे सन कि असी केड़ी केड़ी थां ते प्रचार कर

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिय ध्यान लइए पौ मुकह गुर अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मान वैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसो रूमावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने। कल दा दिन जो बतीत होया है, कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब से ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलक्षण सानू जिहड़ी नजर आउंदी है, इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने, इह 70-72 गया है। 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलक्षणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने, ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है, जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने, कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वह कहा होया केवल तर्क की बिरती वाला लगेगा, ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास की कृपा वरसेगी। विचार आरंभन तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है, सन 1479 नूं बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे होए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नूं राय भोए दी तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का, ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हां दा जन्म आगमन शब्द वरत लईए कि पिंड बासर के 1479 नूं होया। 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरत रहा, अजे वह गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक यह कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा है जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल, ते बीबी भानी जी दी शादी, उन्हां दा ब्याह, उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल, जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने, ते इन्हां दे मन विच एक फुरना उठदा है जिहड़ा मन दा टिकाओ होवे। जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े हां, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथिया है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना, दान पुन करना, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं, 19 वारी वो तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरते हैं, खैर तीर्थ इशनान, गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने, ते महीनियां बद्दी समा लगदा है पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना, ते जाना जाके उत्थे दान पुन भी करना। उत्थे बड़े आराम नाल गंगा दा इशनान करके साधुआं महापुरुषां दे कोल भी बहना। ते अज 20वीं वार जदों बाबा अमरदास जी गंगा तो वापस पै आउंदे ने, ते रस्ते विच एक पिंड आया मेड़ा, जिसनूं पिंड मिठड़ा भी कहा जांदा है। इस पिंड दा एक बहुत ही स्याणा विद्वान पंडित है जिहड़ा ज्योतिष विद्या विच भी बहुत माहिर है, ते इहने अपने घर दे विच एक मानो सरां दा ढंग तरीके नाल मकान बनाया है कि जितने भी यात्री गंगा इशनान करन जाण ते जां गंगा इशनान करके वापस आउंदे होण, उन्हां नूं जल पानी दी सेवा करनी, प्रसाद पानी उन्हां लई तैयार करना, ते रस्ते दी थकावट दूर कर ली, जितने दिन भी कोई रहना चाहे। ते ओह विद्वान पंडित अपने घर विच रखदा सी, ते यात्रियां दा एक सुभा सी कि ओहदे घर विच दो चार दिन आराम करन तो बाद जान लग्या ओहदी तली ते कुछ ना कुछ माया जरूर रख जांदे सन भी चलो ये बंदा सेवा करदा है। बाबा अमरदास अज इह भी उस पिंड विच पहुंचे ने, उस पंडित विद्वान दे घर अंदर, ओहदी सरां दे अंदर उन्हां ने बड़े आराम दे नाल जाके प्रसाद पानी छकिया। कहन लगे गर्मी दे दिन सन, ते बाबा अमरदास जी ओहदे घर तों बाहर निकल के ओहदे लवाए हुए बाग दे अंदर जाके टिक गए, ते गर्मी अत दी पैंदी है। बाबा अमरदास उस रुख दी छां थले टिके ने, ते किन्ने इस पंडित दा नाम सी दुर्गो, सार सुत भिंबी गोद दा सी ए। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੇਟਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਖੀ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਲੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ, ते देख के सतगुरु के बाबा जी दे चरणा विच खलो गया। कहन लगा हे मना, मेरी विद्या कदी झूठी नहीं हो सकती, जे एदे चरणा दे अंदर पदम है ते एक गल ध्यान विच रखना, जां ते ए आउन वाले समय दे अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा,
ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮ ਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਸੁਲੀ ਥੈਲੀ ਖੋਲੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਰਗੋ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਾਟ ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੇਖਾ ਰੇਖਾ ਫਲੇਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਰੇਖਾ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਦਮ ਪੜਿਆ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤ ਲਈ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗੁਰਾ ਹੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪਿਆਵਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਈਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸੋ ਜਿਹਾ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ, ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਗੁਰੇ? ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਗੁਰੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਏ,
साहब कहते ने जो जन्म होया ना तो बचपन में एक आस है अजे कुछ दिन खेडन दे ने खाण पीण दे ने ते अजे मेरे ते जवानी आनी है ते जवानी तो बाद इस मनुख नू एक आस है कि पुत्र धियां वड्डे होए अजे इन्हां दी कमाई नाल मैं सुख मानना मेरे ते बुढ़ेपा आना है। ते गुरु ग्रंथ साहब कहते ने उस बंदे नू मैं पुछ के देखा जिन्हें बचपन का समा जवानी की इंतजार विच बतीत किया जवानी बुढ़ेपे दे आउण दे समय विच बतीत कर दिती हुण बुढ़ेपे तो बाद की आस ला के बैठा की मिलेगा ते पुछया सतगुरु तुसी दसो कहन लगे मेरा ते उत्तर इको ही फसल बीजिए एक आस है जे जमीन विचों निकलनी है अजे कच्ची कोमल फसल ने निकलना है जेड़ी फसल जमीन विचों निकल आवे एक आस है अजे ने डटरी होना है अजे ने कच्ची अजे पक्की होना है ते जेड़ी फसल पक जाए ओदे ते इको आस है अज जा कल जिमीदार आवेगा अपने मजदूरां नू लिया के दातरियां नाल कट के इन्हां नू कर ले जाए। कहन लगे सजना तू ता परमेश्वर दी फसल है ध्यान रखी कि ए रब दी मर्जी है बचपन ओ कच्ची फसल ही जवानी डडरी फसल ही ते जदों केस कालियां तो चिट्टे हो गए उदों फसल पक चुकी है उदों तां सिर्फ इक्को ही आस है अज जां कल मौत जिमीदार ने आउणा है उहने इस फसल नूं कट के अपने नाल लै जाणा। पक्की होई फसल केवल कट्टी जांदी है पक्की तो बाद की करांगे। हजूर ने बाणी विच क्या हरी नाहे ना डडरी ए दरते जे हरी फसल नहीं कट्टी गई ते डडरी दी आस ना करी हो सकदा डडरी तो पहला कोई कट के लै जाए। हरी नाहे न डडरी पक्की वडन हार लैला दात पहोतिया।

0: सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइय, पाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अमेओ चुआइय। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया, पर चेते रखना यह शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द आज भी गुरु के सिखा नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न की प्रेरणा दे रहा है। शब्द असा सुने बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है, इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया, शराब का पेश किया। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं, ते इन्नी टेक के समाधि लाई दी कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जे, ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किकर दे छक पाए ने, अमोवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया, ते इहदे चो गिरदे आपां भांडे उपर होर बखल फिट कीता, उहदे विच नाली लाईए, ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट किया होर भांडा फिट किया, ते उहदे चार चुफेरे असीं मिट्टी का पोचा फेरिया, ते थल्लो अग बाली, ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। एक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब का नशा नहीं, वह रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां, ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो उहदा नशा, उहदा सरूर, उहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है, ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुण बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाईए ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी पवन आ शरीर नू पक्षी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया ने पाठी पवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ चुवाईया एदे विचो अमृत दिया बूंदा डिगदिया एक रस अमेओ चुवाईया कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रच रहा एमस बनी प्रेम में लागी शब्द अनाहत गया एमस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रहे ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आप कह दईए भई ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे है इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी ते सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणे मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा भी उहनां दा बचन है सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहर सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पावेंगे सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओ रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे ने इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय करदे ने ओ लोग तन नूं तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर से दौड़दा पे पिंडे ते पानी पै रहा है पर मन ते उस पानी का असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुकां भरिया ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लेंदे नू पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लेंदे नू पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है ते जे हिंदू है ते चढ़दे नू पानी छड़ के लेंदे नू पानी दे रहा है। ते पंडे कोल आए कह लगे भलिया तू पहली बारी इत्थे आए है? कह लगे हां। फिर किन्ने तेनू पता नहीं पानी चढ़दे नू दईदा लेंदे नू नहीं? सतगुरु बाबा जी किन्ने चढ़दे नू क्यों? कह लगे कुछ तां सूरज नू पानी देंदे ने, कुछ अपने मर चुके पितरां नू पानी पै देंदे ने। बाबा जी कहन लगे पितर किन्ने कु दूर ने? उन्हां ने करोड़ां कोह दी गिनती कीती ते बाबा नानक जी फिर पानी झत्तन लग पै। ते उन्हां कहा हे बाबा असी तेरे सवाल दा उत्तर दे दिता, तुसी पुछिया असी पानी किन्नू देने आ? असी सूरज ते पितरां नू पानी दे रहे आ ते तुसी पानी किधर दे रहे हो? बाबा नानक जी कहन लगे मेरी धरती है लेंदे नू, जमीन विच फसल बीजीए। ते कई वारी साडे वीर कहंदे ने बाबा जी ने कहा मेरी करतारपुर जेड़ी खेती सुकदी पई है। नहीं प्यारे अजे करतारपुर शहर बद्दा भी नहीं सी, करतारपुर ते सब तो अखीर विच बज्जा। कहन लगे लेंदे नू मेरी धरती विच बीज पिया फसल सुक रही है, मैं चाहना वा पानी चढ़ चढ़ के उस फसल नू भरपूर कर दिया। सारे हस के कहन लगे देखो इन्नी अकल नहीं, आ गंगा विचो पानी निकल के तेरे तौरा विच फिर परत के रुड़ के वापस आंदा है, इन्ने को दूर पंजाब की धरती ते पानी पहुंचेगा? जा तेरी उस धरती ते जिथे तू फसल बीजी पानी अपड़ जाएगा? बाबा जी कहन लगे पंडा जी मैं ता अज पानी सिंजन आया, आ तुहानू किन्ना कु चिर हो गया पानी चढ़दे नू सिंजने आ? कह लगे ते ता हर साल ही लोकी सिंजदे ने, जदों कोई यात्री आए ते पानी सिंजदा है। साहब कहन लगे पंडित जी जे तुहाडा सिंजिया होया पानी करोड़ां को दूर पितरां तक ते सूरी तक पहुंच सकदा है, ओ साडी धरती ते सैकड़े कुआं तेरे कि साडा पानी उस धरती ते नहीं पहुंचेगा? जे तेरा सैकड़े कुआं दूर हजार करोड़ां कुआं दूर ते साडा सैकड़े कुआं दूर नहीं जांदा? लोग हैरान हो गए, कहन लगे अज तक किसी ने सोची नहीं, वाकई जेकर पानी पितरां तक पहुंच जांदा है ते ए पानी इस धरती ते नहीं पहुंच सकदा? ते सारे कोल आ गए, कहन लगे बाबा गल तां तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, पानी पितरां तक पहुंचदा नहीं। ते चेते रखियो पितरां दा असी अर्थ करने आ जेड़े मर चुके प्राणी ने, जेड़े बजुर्ग चढ़ाई कर चुके ने। पर अज बाबा जी ने एक किवाड़ खोलिया उन्हां लोगां दा जेड़े जिउंदे जी तां बापू दे मुंह विच कुट पानी दा नहीं पाया, जिन्हां ने जिउंदे जी मां बाप नूं रोटी नहीं कदी अदब नाल दित्ती ते मरण तो बाद गंगा विच खलो के चढ़दे नूं पानी सट के कहिंदे ने पितरां नूं पानी देने आ। गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ने उन्हां लोकां नूं झंझोड़िया। पहली गल इत्थे दो गल्लां ने, एक तीर्थ ते नहाउण वाले ते दूजे पितरां नूं पूजण वाले। आपां भाई साहिब भाई गुरदास जी उन्हां तों पुछिए भी जेड़े लोक जिउंदे जी मां बाप दा अदब नहीं करदे ते मरण तों बाद पितरां नूं पाणी देंदे ने, भाई गुरदास जी तुहाडे कोल गुरु नानक जी दे घर दी विचारधारा दसो, उन्हां बारे तुहाडा की ख्याल? भाई गुरदास जी दी वार नंबर 37 ते पौड़ी नंबर 12 ते 13 ध्यान रखना। भाई गुरदास जी कहिंदे ने ऐ मनुख ए माया किन्नी प्रभावशाली है, जिदन तेरा जन्म होया रब दा भाणा उदन वापरिया। वैसे असी भाणा अखर जेड़ा है ना इनू दुखांत नाल जोड़ दिता है, ध्यान देना। असी कई बारी भाणे अखर नूं दुखांत नाल जोड़ने आ, कोई काम बिगड़ जाए, कोई मर जाए, किसे नूं सट लग जाए, असी कहने भाणा वापरिया है। मौत होवे ते कहने भाणा वापरिया है, ते जदों जन्म होवे ते कोई नहीं जे कहिंदा इन्हां दे घर रब दा भाणा वापरिया है। असल भी जिदन बच्चा जमदा उदन भी भाणा ही वापरदा है। आ इक शब्द हुंदा है आनंद साहिब विच, जां तिस भाणा तां जमिया परिवार भला पाया। कहिंदे जां तिस भाणा तां जमिया, जिदन तेनू रब जी पाया उदन जीव दा जन्म होया। ध्यान रखना कुछ अखर ऐसे ने जिवें हुण एक अखर है जलूस, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੋ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਦਾ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੂੰ, ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਾਂ। ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪੋਰ ਅਪੋਰ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਉਦਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਵਿਚੋਂ ਗਰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਤਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੈ ਉਦਨ ਸਾਈ ਵਿਸਰਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੀ ਟੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣੇ ਆਰੀਏ, ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਨੀ ਤੂਣੇ ਹਾਰੀਏ ਇਸਤਰੀਏ। ਤੂੰ ਕਾਮਣ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੇ ਸਾਈ ਵਿਸਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ
1: ਸਕਣਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੁੱਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਮੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਸਹਿਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਠ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਪਾਠੀ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਤੁਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
2: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੁਰਖ

कर्मां दी सजा मिलेगी। हुण मन लो बंदा यह तैयार हो गया, मैं कर्म माड़े कर बैठा, कोई मेरे वास्ते बचा दा राख है? ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहब ने बड़िया सोहनिया उदाहरणा दित्तियां प्यारियो। कदी गुरु तेग बहादुर कृपालू जी दे बचन पढ़ो, कहिंदे ने खे परमात्म देव अब मैं कौन उपाओ करूं, हुण मैं की उपा करा, कर्म मैं माड़े कर बैठा। जे बिद मन को संसा चूकै भव निध पार परूं, मेरे मन दे शंके दूर हो जाण, मैं भव सागर तो तर जावां। तुसी गुरमुखो तवज्जो बख्शो, सिर मैं दो तुकां लईयां ने, कर्म करने आ बीज ने, जे मन लो अज तीकरा माड़े कर्म कीते ने, अज ही मन समझ जा मना तू धर्म वाले पासे तुरने, ते की पिछले कीते हुए कर्म दगद हो जाणगे, पिछले कीते हुए कर्म खंडन होणगे। हजूर ने बख्शिश कीती अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूकै भव निध पार परूं। अगे बचने जन्म पाए कछ भलो ना कीनो, ताते अदक डरूं मन बच क्रम हर गुनी गाए, ये जी सोच धरूं गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस जो उदर भरूं कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब खौ पतत तरूं। कर्म मैं कर लेने पर मेरे मालका तू अपने बिरद बाने दी लाज रख, ता मेरे कर्म कटे जा सकदे। इथे एक भगत महापुरुष जिन्हां दे गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन ने, देखो उसने कमाई कीती, कर्म भावे माड़े सन पहला पर सिमरन करन तो बाद इक सानू मार्ग दस के गए। भगत सदना जी दा बचन हुंदा है गुरु ग्रंथ साहिब विच, उन्हां दा कर्म की सी, कसाई पुणे दा काम करदे सन। जदों रब दी परमात्मा दी भगती वल चले, साडा समाज कदी किसे नूं नहीं जे बख्शदा। एक गल ध्यान विच रख के चलियो, गुरु नूं मिलना है रिश्तेदार समाज ते परिवार दा ध्यान रख के चलोगे खुश हो जाणगे, ये कदी भी खुश नहीं जे होने। जे किसे ने खुश करना ते अपने साईं नूं आप रिझाइए, जां दुनिया खुश होवेगी ते जां फिर रब खुश होवेगा, एक पासे रहण। बाबा कबीर साहब नूं किसे ने बचन कहे सन, कहन लगे लोग तुहाडी बड़ी निंदिया करदे ने, कहन लगे कौन के सारा संसार, कहन लगे जिहड़े निंदिया करदे ने इह किहड़े ब्रह्म ज्ञानी ने, इन्हां ने रब नूं पाले। उन्हां दे दो श्लोक हुंदे ने, कबीर मैं जानियो पढ़बो भलो, सोचिया सी विद्वान बन जांगा बड़ी चंगी गल है, पढ़बो सो भल जोग, पर मन ने क्या पढ़ाई नालो चंगा जोग दा आखरी अर्थ मिलाप, मैं जानियो पढ़बो भलो, पढ़बो सो भल जोग, भगत ना छाडो राम की भावें निंदो लोग। उन्हां कहा भी जे लोग इन्ना माड़ा कहणगे ते क्योंकि साडा मन थिड़क जांदा है, जदों कोई माड़ी जी गल समाज विच करदा है ना, असी इक्को दम छलक जाने आ, थिड़क जाने आ। प्यारियो रब ते भरोसा साई ते यकीन करके तुरियो, राह उन्हां नूं मिलदे ने जेड़े अपने सीने गुरु नूं अपने अंदर गुरु नूं समर्पित करके चलदे। लोगां कहा तेरी निंदिया, कबीर जी दा अगला श्लोक कदी ना भुल्यो, कहन लगे कबीर लोग के निंदा है बपड़ा, की मेरी निंदिया करनगे, जे मन नाही ज्ञान राम कबीरा रव रहे अवर तजे, सब काम लोग की निंदिया करनगे जिन्हां नूं अब आप रब बारे पता नहीं। कर्म असी माड़े कर बैठे मान लो, ते हुण उन्हां कर्मां नूं असी पश्चाताप करके कह लईए, पहली गल केड़े कर्म ने जेड़े नखिद ने, दो तरह के कर्म ने, एक बिद ने एक नखिद ने। बिद दा अर्थ हुंदा करन जो कम, ते नखिद दा अर्थ है जेड़े कम नहीं करने। जे गुरमत दी बोली भी समझना है, रहत दा मरत है, मतलब है बिद कर्म एक करने ने, ते करैत दा अर्थ नखिद कर्म कदी नहीं करने। भगत सदने ने रब वाले पासे तुरिया, लोगों ने बख्शिया ना, सारिया ने इको गल कही, कल तक कसाई सी अज बन गया वड्डा भगत। गुरमुखो एक कदी भी भुल्यो ना, परमात्मा दी दया किसे वेले किसे घड़ी किसे थां ते कदी भी वापर सकदी है। मत समझिए भी जिवें यूनिवर्सिटी विच कोई पढ़द है 18 साल लाए 20 साल लाए तां किते डिग्री मिलेगी, नहीं, हो सकदा रब मेर करे तू अज आए अज मत्था टेके अज ही तेरी झोली विच खैर पै जाए। एक प्रश्न है, किसे सज्जन ने बाहर सवाल किया ते मैनू बहुत चंगा लगा उहदा सवाल। उहदा प्रश्न सी भी कुछ लोग ने जिहड़े आउंदे ने आके कई कई साल गुरु कोल परमात्मा

अकाल मूरत अजूनी सैतम गुर प्रसाद जप आदि सच जोगाद सच है सच नानक खुशी पी सच मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझे आ गया अरदास मैं पूर थाऊ नाही जिस पह करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझगी पास ना हो जति सती नहीं पड़या

0: अपने अंदर पैदा करनी है। जे ये गल्लां होणगियां ते ओ समझो भी उन्हां दे शहीदां दे डुले हुए खून का जो साढ़े सिर ते कर्जा नूं असीं उतार सकांगे, उन्हूं ला सकांगे, नहीं तो की होएगा। जे असीं मनमत दे ढह चढ़ गए, अनमत दीआं गल्लां असीं करन लग पए, ते माफ करना, सिख परंपरा यह है कि मुड़के वह समा आ जाएगा कि फिर कुछ उठणगे लोग, फिर जागृति पैदा होएगी। ये गुरु का इतिहास इस गल नूं प्रगट करता है, साडा 500 साल तो वध दा पिछोकड़ दा इतिहास इस गल नूं प्रगट करता है कि सिख धर्म के अंदर बिना किसी सहारे के जीवन की ताकत है। और जदों भी कितें इहनूं दबाउण की कोशिश की गई, इहदे विचों ही ऐसियां लहरां पैदा होईआं, ऐसे लोग उठ खलोते जिन्हां ने मनमत ते दुरमत के खिलाफ उस संघर्ष किया कि जाना भी वार दित्तियां, आपां भी कुर्बान कर दिता, पर गुरु साहब की चलाई हुई इस परंपरा नूं उन्होंने दाग नहीं लगन दिता, पिछे नहीं पैन दिता। तो यह साडा फर्ज बनता है कि उन्होंने शहीदों की याद में असी इकत्र होए हैं, उन्होंने पूरियां दे ते नाम ही नहीं मिले लोगों, कोई 86 का नाम मिलते, बाकी नाम ही नहीं मिले कि किन्ने क लोग शहीद हो गए। पर यह है कि उन्होंने सारिया ने सानू यह गल समझा दी कि भाई गुरु की दसी हुई मत जड़ी है उसनू प्राप्त करने वास्ते उन्हू दृढ़ करने लई असी आपां ने शावर करना है इन्हें अखरां नाल ही, क्योंकि इतिहास बहुत बिखरिया होया है, बहुत विस्थारमई है। मैं संखेप नाल तुहाडे नाल कुछ गल्लां सांझियां कीतियां ने, सतगुरु साडे अंदर बरकत पाउण, साडे दिमाग विच इह गल आवे कि असी उन्हां शहीदां दी आन शान नूं बरकरार रखण लई गुरमत दे दृढ़ करन दा यतन करना है, ते इस दा प्रचार करके गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करनियां हन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: कृष्ण परस कै मथुरा अमृत बयान, मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जुन पिखो नयन, अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की।

जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सुदमा अपदा ते राखिया गणका पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए।

गुरु प्यारी परम सम्मान योग सात संगत जी वड्डियां भागां वाले हो छतर चावर तख्त दे मालक ज्ञान दे सागर

शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सुकहु तल गुर सेविए एहन सुसहज सुभाए

सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। गुरु प्यारी परम सन्मान योग सत संगत जी, आप जी वड्डे भागां वाले हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद विच बैठ के अपने जीवन दे कुछ पल सफल बनान दा यतन कर रहे हो, वडभागी हो। आओ जिथे तन करके सतगुर दे चरणां विच हाजरी लवाई है, मन दी हाजरी भी गुरु चरणां विच लवाओ, किते ऐसा ना होवे तन हाजर होवे ते मन गैर हाजर होवे, ते जे मन इत्थे ना होया ते तन दी गैर हाजरी लग जाएगी। आओ जिनी संगत गुरु चरणां विच जुड़ के बैठी है, सारे प्यार सहित गज के फतेह दा जवाब फतेह भी दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज धन धन श्री गुरु अंगद देव पातशाह, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का आगमन पुरब बड़ी श्रद्धा प्रेम ते भावना दे नाल मनाया जा रहा। भावें यह आगमन पुरब 18 तरीक सी, बुधवार आपां गुरु अंगद देव जी दे इतिहास की विचार कीती सी, ते अज दा दीवान गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे आगमन पुरब नूं समर्पित होएगा। माता महिंदर कौर ते उन्हां दे परिवार ने सतगुरां दे आगमन पुरब मनांदिआं होइआं अखंड पाठ साहिब जी दी सेवा लई ते आप संगतां नूं सद्दा भेजिआ, आप सारे हाजरी भर रहे हो। सब तों पहलां मैं सतगुरां जी दे आगमन पुरब दी आईआं संगतां नूं बहुत बहुत वधाई दिंदा हां। सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए, से जंत भय हरियावले, जिन्हें मेरा सतगुरु देखिया आए। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुर जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिन्हें डिठा, तिना लै छडाए। गुरु अंगद देव पातशाह जी का आगमन मत्ते दी सरां पिता फेरूमल जी दे ग्रह विखे, माता सबराई जिन्हों बहुते इतिहासकारां ने माता दया कौर भी इतिहास विच लिखिया, उन्हां दी कुख तों 1504 ईस्वी दे विच होया। गुरु अंगद देव पातशाह जदों मत्ते दी सरां उजाड़ दित्ती गई, उन्हां दे पिता फेरूमल हरी के पतन आए, हरी के पिंड विच कुछ समा रह के फिर खडूर साहब आ गए। खडूर साहब उन्हां दा व्याह होया सी माता खीवी जी दे नाल, 4 2 पुत्तर ते 2 पुत्रियां सन गुरु अंगद देव जी दियां, एक दा नाम दातू, एक दा नाम दासू, बीबी अमरो ते बीबी अनोखी। पिता देवी दे भगत सन, दुकानदारी किता सी। जदू पिता जी अकाल चलाना कर गए ते ए भी देवी दे भगत बन के
ਭੇਟਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀ ਹੈ, ਤੋ ਦਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਸਵਈ ਹੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ।

अपरंपर अलख अपेव दृष्ट तरत तम हरण दहन अग पाप प्रणासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु सत सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरे गुर राज गुर जगत फिरन सिंह अंगरो राज जोग लहना करे अमे दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सुकहु टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

फिर हाथियों नो नमस्कार करने पाएंगे। अगर कोई अपने आप नो थोड़े जिया तो सही है ते दुख झेलन वास्ते जो है तैयार कर लवे। तो मैं फिर अर्ज करा रस्ता तो बिखड़ा है, तुसी आखो कोई सौखा रस्ता है, सौखे रस्ते ते थानू बहुत वड्डी भीड़ मिलेगी, बड़ी भीड़ मिलेगी। औखा रस्ता, औखे रस्ते दे उते बंदे कल्ले मिलणगे। इकबाल दा भी कहना है, काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कहिंदे मैनू एक रस्ता ते बिल्कुल सुनना ही नजर आंदा पे। जिन्हां रस्तियां ते कदी धर्म दे खुदाई काफले चले सन, उन्हां दे चों कुछ ते पहुंच गए ते कुछ रस्ते दे च ही फना हो गए। हुण रस्ता उजड़िया पिया है, तो मैं कह दिया जिस रस्ते ते कदी चलिया सी मनी सिंह, जिस रस्ते ते कदी चलिया सी दयाला मती दास, जिस रस्ते ते कदी चले सन गुरु अर्जन देव जी महाराज, साहेब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बकोले इकबाल, उन्हां रस्तियां ते बहुत वड्डी भीड़ नहीं है। मैं इंज आखांगा कि 300 साल तक उस रस्ते ते ना कोई चलिया, सन्नाटा ही छाया रहा, सुनना ही छाया रहा, और मायूसी हो गई, ये रस्ता ते उजड़ गया। पर धनवाद है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का, गुरु नानक देव जी महाराज का, कुछ मर जीवड़िया ने उस रस्ते देते फिर चल के दिखाया है, और आखे इस उजड़े हुए रस्ते नो असी आबाद करना है। किधरे अज इकबाल जिंदा होंदे ते उन्हां दे शेर दा अज मैं उन्हां नू जवाब देना सी, रस्ते उजड़े नहीं ने। इन्नी गल मनदे इन्हां रस्तियां ते भीड़ नहीं है, ये ते मनदे आ। ये भी मनते हैं कि इन्ह रस्तिया के उत्ते बड़ी मुद्दत तक कोई चलता भी नहीं है। रस्ता काटिया का, रस्ता चढ़ाइया का, चंगिया चंगिया के दम जिथे भुल जाए, चंगिया चंगिया जिथे पसीना निकल जाए, तो चंगे चंगे जिथे सोच लैन हूं मुड़ जाइए, पिछे ही मुड़िए। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, जितना जोशो खरोश दिखाने वाले ने थानू 15 दिन च, 20 दिन च, महीने, 2 महीने च, इन्हों च कई मुड़दे भी दिखाई देने। घाटिया ने, चढ़ाइया ने, कौन चढ़े, क्योंकि मेरी जिंदगी का यह तजर्बा है, थोड़ा जहा हो सकता है गलत हो, पर मेरा यह तजर्बा है। नाल थोड़े जहा चल पैन चढ़ाइया का पता चलता, नहीं हूं नहीं, फिर पिछे मुड़ना शुरू, फिर स्वार्थ, फिर कौन जाए, एक एक करके लोग टुट देने। गढ़ी दे जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फसे सन मुगल सेना दे, ते पता है सिंघा ने पहले मता की पकाया, एक सिंह नूं सुला दिता चारपाई ते, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहण लगे महाराज ये चढ़ाई कर गए, आपां इहदा दास सत्कार कराईए। ते सतगुर नूं पता सी हुण सिद्धे ते भजना नहीं चाहते, बई तुहाडे नाल नहीं रहना, घिरे हो तुसी विपता दे च, ते हुण विपता दे जब तुसी घिरे हो ते फिर असी भी जो है सुरक्षित थोड़ी हाँ, विपता च असी भी पै जावांगे। हुण सीधा आखीए आखन कि असी जाना है, असी नहीं रहना नाल, इतनी हिम्मत भी ना पवे। ते कह दिता महाराज सिंह चढ़ाई कर गया है, आपां इसका अंतिम संस्कार करके आ जाने हैं, क्रियाक्रम फिर वापस आ जावांगे। सतगुरु कहण लगे जे अंतिम संस्कार करना है ता रस्म यह है कि सारे थोड़ी थोड़ी लकड़ा पाते ने, रखते ने, ते आपा थोड़ी जी अग इतें ही ला देने इनू, क्योंकि मैं भी शामिल होना चाहना, गुरु का सिख है, धार्मिक बंदा। सतगुरु जब बलदी हुई चौंती एक चुल्हे चो लियाण लगे एकाग्रता बख्शने, ते उस मंजे उत्ते सुते सिंह नूं जो चौंती लाण लगे एकदम खड़ा हो गया। जानी जान सतगुरु नूं पता सी ते मेरे सामने नाटक पे रच देना, ते सतगुरु कहण लगे मुर्दा बन के भजन दी लोड़ नहीं, तुसी जीवंदे ही चले जाओ। इंज कटाक्ष कीती सतगुरु ने, मुर्दा होके रुखसत ना हो, जाना है ते जिंदा होके जाओ, जीवंदे ही जाओ, मुर्दियां दा ढोंग क्यों रचदे हो। तो खिमा करने

0: पत्थर मारन दी हिम्मत नहीं हुई, फुल मैं मारे, पर मैं मारिया जरूर है। पर मैं समझना धन है ओ शिवली जिन्हें पत्थर नहीं मारिया फुल मारिया। अज दे शिवली ने तो कई पत्थर मारे, खिच के मारे और अजे भी मार रहे। और गजब की गल, उस शिवली ने मनसूर दे चरणा ते शीस रख के मथा टेकया भी मैथों भुल हुई है। अज दा शिवली कहिंदा नहीं, जो मैं बोलिया, जो मैं कीता, जो मैं मारिया, ये ठीक कीता, ये जायज है। ते गुस्ताखी माफ, बाकी जो कुछ साडे जो है खिलाफ कर रहे ने, मैं ते समझदा ये कठपुतलियां ने, ते जिन्हां दे हाथ च दागे ने तिन्हां कठपुतलियां नूं नचा रहे ने। क्षमा करनी है कौम, जिन्ने चिर तक उन्हों का बाईकाट नहीं करेगी मुश्किल है कि कौम अगां वध सके। इस वास्ते बाबा जो है दीप सिंह जी के इस महान पवित्र स्थान तो मैं ये दो बिने जो है सिंह साहबान के चरणा जो है करांगा, इस नूं दूर दृष्टि के नाल लैन। बाकी तो सब कठपुतलियां ने, दास तो सारे इन्होंने दसे किवें मारना। एक अरका भेदी लंका डाले, रास्ते सारे इन्होंने दसे, रस्ते तो सारे इन्होंने दसे, इस कौम नूं किवें जलील करीदा, इहनूं किवें मारीदा, इस नूं किवें नुकसान पहुंचाईदा, इन्हां नूं जो है किवें चोट पहुंचाई दी है, ते किवें करनी। वह इस तरीके नाल सुरखरू बने रहन, सारी कौम दे जो है सारी दुनिया दे सानू जलील करते फिरते रहन, ये गल सोचण वाली है, विचारण वाली है। ते मैं अर्ज की सी लौदसे ने कहा, कोई कौम साहसी है, दलेर है, भावक है, दयालु है, सर्वगुण संपन्न है, पछड़ गई है, मार खा गई है, कहिंदा कारण घरेलू हो गए। बलू यही है लौदसे दे बहुत, और बिल्कुल ठीक। वक्त के सताधारियों मैं ये आखांगा, लौटते दे दूसरे बोल, जहां सेना के कदम रुकते हैं वहां कांटों के जंगल ही पैदा होते हैं, गुलिस्तान ही पैदा होते हैं, उथे फुल नहीं खिड़ते, उथे कंडे ही कंडे, उथे उदासी उदासी, उथे कब्रिस्तान का जो है जन्म आता है। तो पंजाब क्षमा करनी, इतनी मैं अर्ज कर दिया कि अज तक सिखां दियां जिहड़े कबरां बनाण आए सन उन्हां दियां ही कबरां बन गईआं। क्योंकि जिस कौम नूं मरण दी जाच आउंदी है उन्हूं जिंदा रहण दी भी जाच आउंदी है, उन्हूं जीवन दी जाच भी आउंदी है। जिहड़ियां कौमां भुल जांदियां ने मरना, उह जीवना भी भुल जांदियां ने। ते आपां अज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तों बाबा दीप सिंह जी दे इस स्थान ते मंग मंगनी है, दाता ए जिहड़ा तेरा फरमान सी, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास शक्ति दे समर्था दे, ताकि मौत नूं खिड़े मत्थे कबूल कर सकीए, ताकि कौम दी जिंदगी उजागर कर सकीए, महान कर सकीए, उच्ची कर सकीए। इतने शब्द इस वक्त प्रवान करने, बाकी सवेरे 7:30 तो लैके 8:30 बजे तक शब्द की कथा आप जी के समक्ष जो है करांगे। 3-4 महीने कोई लगातार मैं सफर दे चुके रहा, थोड़ा जहा कोई शरीर भी
1: सूचना सुनते जानी, एक जरूरी सूचना सुनते जानी,
0: शरीर भी थोड़ा जहा ढिला चल रहा है, इस वास्ते थोड़ा जहा समा मैं सवेरे लावांगा, घंटा पौना घंटा शब्द की विचार 7:30 तो लैके 8:30 बजे तक। ते दूसरी अर्ज ए है कि सरदार खुशवंत सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट दे जो
1: रद्द हो गई है जी।
0: अच्छा जी, सो खैर जिहड़े हालात ने वो आप नूं सरदार इकबाल सिंह जी जो है दस देणगे। बाकी प्रोग्राम सवेरे दा इत्थे जो है सजेगा, ते दास सवेरे 7:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक शब्द दी जो मुखवाक दरबार साहब आउंदा है ओदी कथा इत्थे सवेरे होवेगी। उस तों पहले आसा दीवार दा कीर्तन होवेगा। आप इसे तरीके नाल हुम मा के इत्थे पूजण दी कृपालता करनी, भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा।

श्रेष्ठ धर्म की है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, हरिदा नाम जप यही निर्मल कर्म है, हरिदा नाम जप यही श्रेष्ठ धर्म है, और कोई निर्मल कर्म नहीं और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं। हर को नाम जप ये दो सवालों का जवाब है, जप कर बस यही श्रेष्ठ धर्म है, यही निर्मल कर्म है, इस तो वड्डा और कोई निर्मल कर्म नहीं, तो जप कर, इस तो वड्डा और कोई धर्म नहीं तो जप कर। क्षमा करनी, जप ने शुद्ध करना है, जप ने पवित्र करना है, जप ने निर्मल करना है, जप ने श्रेष्ठ बनाना है, तो जप सिख दे चो निकल जाए, सिखे निकल जाती है, सिख खड़ा ही जपते है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी जप है, और समुचे सिख जगत नु गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जप नाल जोड़न की कोशिश की। जप नाल जुड़ोगे खालस होवोगे, शुद्ध होवोगे, जप नाल जुड़ोगे बहादुर होवोगे, सुरजीत होवोगे, जीवदे जागदे होवोगे। मूल गल जिहड़ी है ओ जप है। तो साहिब इत्थे कहिंदे ने पाप की है, पाप दी हुण वजाहत है दो लफ्ज़ां विच करनी होवे, जिस बोल तों, जिस कर्म तों, जिस किरदार तों, जिस विचार तों किसे नूं चोट पहुंचे पाप है। कोई लिख के पाप करता है, कोई बोल के पाप करता है, कोई करके पाप करता है, पाप ते कई तरह ने। चोट किसे नूं पहुंचानी है, लिख के चोट पहुंचाओ। इस देश विच बड़ा भयंकर पाप है। मैं जिन्ने अखबारों के एडिटर देखे, महापापी देखे, जो कुछ लिखते पे सन, जिन्ना लिखते पे सन, फिर पापी ये देखे सूचना प्रसार मंत्री जो टीवी दे उत्ते जो बुलाई जाने चोट बोल के चोट पहुंचाई जानी है, इन्नी चोट पहुंचानी है, बोल के चोट पहुंचानी, लिख के चोट पहुंचानी, या किसी कर्म नाल चोट पहुंचानी, ये जिहड़ा चोट पहुंचाना है ये पाप है। महाराज कहिंदे ने राम दे दासां दे सरोवर, रामदास सरोवर दे च इशनान कीता ते किसे नूं चोट पहुंचाण वाली है जिहड़ी पाप बिरती सी ओह धुल गई, हुण चोट नहीं पहुंचांदे, निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। और यह हकीकत है, सिख ने अपना हक मंगया है, किसे दा हक खोया नहीं, अज तक नहीं खोया। इत जप करदा है, इत सतगुरां नाल जुड़े होया है, पर इतनी गल स्पष्ट है कि जद कोई इस दा हक खोवे ते मुर्दा नहीं फिर जीवदा जागदा है। एदियां कलियां भी मलण दियां लोड़ नहीं, इहदे अंदर उंज ही खून रूह कर रहे हैं, इहदे अंदर उंज भी जज्बा मौजूद है, इसके अंदर उंज ही जो है अग्नि मौजूद है। तो साहिब कहिंदे राम दे दासां दे सरोवर दा इशनान कीता, होया कि सारे पाप धुल गए, सारे गुनाह धुल गए। हां जी, इशनान करके निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। हां जी, पर ये बख्शिश गुरु ने दान दे रूप च दिती है। असी कोई मुल दिता है सरोवर दा, इस हरि मंदिर दा कोई मुल दिता है, कोई मुल चुकाया। सतगुरु ने इतना वड्डा तीर्थ, इतना वड्डा सत्संग दा गढ़, इतना वड्डा पवित्रता दा सोमा सानू दान दे च दिता है, असी इस दे इवजान च की दिता है, सानू दान दे च दिता है। इतना सिरमौर केंद्र बख्शिश भरिया ये पवित्र अस्थान, और बख्शिश भरिया ये निर्मल जल, ये सारी दात सानू उसने दान दे रूप च दिती है। असी इस ढंग नाल सारे जो है भिखारी हाँ। तो साहिब कहिंदे ने पूरे गुरुदेव ने ये दान कीता, ये बख्शिश कीती है। हाँ जी, हर प्रकार की जिहड़ी कुशलता है, हर प्रकार का जो मंगल है, सुख है, कल्याण है, उसकी प्राप्ति हुई, मन दे च उसकी धारणा हुई। हाँ जी, गुरु शब्द की विचार करदिया करदिया हर प्रकार के थोक की प्राप्ति हुई, शरीरक सिद्धि, मानसिक सिद्धि, अध्यात्मक सिद्धि, भाव शरीरक सुख, मानसिक सुख, अध्यात्मक सुख, सारे सुखां की प्राप्ति हुई गुरु के शब्द के विचार करदिया करदिया। हां जी, साधुआं की संगत करदिया करदिया, गुरु की संगत करदिया करदिया, जितनी भी पाप की मैल से सारी दी सारी उतर गई, लै गई। हां जी, और इस तरीके दे नाल जद पवित्र होए ते अकाल पुरख अंग संग हो गया, साथी बन गया, मददगार बन गया। हां जी, गुरु दी बख्शिश का सदका, रहमत का सदका, नाम का जप कीता, प्रभु दी बाणी पढ़ी। हां जी, ओ जो अनादि अकाल पुरख है, परिपूर्ण परमात्मा है, फिर उसकी प्राप्ति हुई, ओ सानू मिलिया। इत्थे तक शब्द दे विचार, शब्द दे

तपस्या की थी जिथे उसनु ज्ञान होया सी। वो दरख्त मौजूद है 2500 साल पुराना, बाबे दी बेर मौजूद है सुल्तानपुर विच। पिछले साल जब मैं दर्शन करन गया ते खून टपक रहा सी, ते मैं ग्रंथी साहब तो पुछे ते खून लगता है, ते मैं इस तरह कदी दरख्तां तो टपकदा होया नहीं देखे, अज तक नहीं देखा। मेरे ख्याल संत बाबा करतार सिंह जी भी है गए, ते मैं सुते सिद्ध इन्हां तो भी पुछिया सी जिथे तक मैं याद है। मैं कहते खून है, बिल्कुल खून है। तो मैं कहन लगे हाँ डॉक्टर ने टेस्ट किया है, खून है, बिल्कुल लैबोरेटरी दे चले जाके उसकी पूरी पड़चोल की थी, ते खून है। बेरी दे चों खून, कुछ दरख्त परम पुरखा नाल जुड़े हुए ने, बोड़ महात्मा बुद्ध नाल जुड़े हुए हैं, किकर करी ये श्री कृष्ण नाल जुड़े हुए ने। कभी बौर मुताला करके वेखना, यह जड़ा पिप्पल है कुछ देवी देवतावां नाल संबंधित रखता है, बेरियां गुरु घर नाल जुड़ी हुई हैं। बाबे बुढ़े दी बेर, दुखबंजनी बेर, लाची बेर, सुल्तानपुर दिया गुरुद्वारा, बाबा बेर साहब गुरुद्वारा बेर साहब, बेरियां दा कोई गुरु इतिहास नाल गुरु घर नाल बहुत लंबा चौड़ा संबंध है। और इसे तरीके नाल मैं होर भी कुछ दरख्त देखे ने जो दुनिया के बाहर के महापुरुषों नाल संबंधित ने। इन्हां दा पिछोकड़ की है किसे कते इत मैं फिर अर्ज करा, लेकिन इत मैं अर्ज करा बनस्पति दे जिंद जान है, बनस्पति दुख सुख महसूस करती है। इहदे उत्ते सिर्फ मौसम दा ही असर नहीं, मनुख दे विचारां दा भी असर है, माहौल दा भी असर है। ते मैनू उत्थों दे ग्रंथी सिंह ने दस्या सी 1947 विच इस बेरी दे चों खून निकलिया सी, बड़ा निकलिया सी, ते बड़ी कटावड़ी होई। उन्हां दिनां च किधरे रेलवे फाटक रेलवे क्रॉसिंग दे उत्ते 35-40 सिंह जिहड़े मारे गए सन उन्हां दिनां च, ते खून निकल रहा सी। ते कल मैनूं किसे सज्जन ने दस्या फिर निकलदा पिया है, ते ओ कागज़ दे उत्ते उस खून नूं तब्बे लवा के ना मैनूं आके दिखाया, वो फिर काफी निकलिया। संकेत ने इशारे ने कई दफा मनुख नहीं समझ सकता, दरख्त समझ जांदे, बनस्पति समझती, बनस्पति नूं बोध हो जांदा है, बनस्पति नूं जो है पता चल जांदा है। खैर गल लमकाईए ना, मुख्तसर अर्ज करिए, लंबी उम्र महान उम्र इन्हां योगियों ने ते कर ली, लेकिन परम आनंद नहीं सी, परम रस नहीं सी। सहजे सहजे ये लहर ढिली पई, जिवें मर्यादा पुरशोत्तम की लहर भारत दे ढिली पै गई, लीला पुरशोत्तम की लहर करीबन करीबन मिट गई। हुण किसे नूं दुराचार चंगा नहीं लगता, पार्लीमेंट दे ची अजा जो है आवाज उठ चुकी है, देवदासियां की प्रथा खत्म होनी चाहिए, ये मंदिरां दे च नहीं चाहिए, नचदी हुई टपदी हुई ये ते वेसवावां ने। और इस तरीके नाल मंदिर बद अखलाकी के अखाड़े बन जाते हैं और पुजारी भ्रष्ट हो जाते, ये तौर तरीके चले ने, पार्लीमेंट दे च आवाज उठी है। तो वह लीला पुरशोत्तम की लहर भी ठंडी पै गई, महात्मा बुद्ध की लहर भी मिट गई। उदे मिटन दे होर कारणां दे चों एक ए भी कारण सी कि उस लहर की हिफाजत करन लई बोधियां कोल कुछ भी नहीं सी, तलवार दे धनिया ने शस्त्रां दे धरनिया ने भी उन्हां नूं मारिया, ते उन्हां दे अपने डिंब ते पखंड ने भी मारिया, लहर मट्ठी पै गई। योगियां दी लहर चली, बड़े वड्डे पद्धर ते चली, राजे महाराजे भी लपेट दे चाहे, आम प्रजा भी लपेट दे चाहे, लेकिन ए भी ठंडी पै गई, क्योंकि बंदे नूं निरी सिद्धि नहीं चलदी, बंदे नूं चाहीदी है परमात्मा दी सिफ तो सलाह ते परम आनंद समाधि। सिर्फ उम्र लंबी कर लेना ये ते कोई मायने नहीं रखता, ते करामात है कि महाराज कहंदे ने सा सिद्ध सा करामात है अचिंत करे जिस दात, अचनचेत उजड़ियां दातां दे रहा है, बस ये करामात है, और की चाहिए। पवन वग रही है, सूरज की रोशनी पई मिलती है, वगदे हुए दरियावां चो जल पिया मिलता है, रिजिक पिया मिलता है, करामात नहीं ते और की। तेनू बच्चे मिल गए, पत्नी मिल गई, पति मिल गया, भरा मिल गए, संबंधी मिल गए, दातां, ये करामात नहीं ते और की, और तेनू केड़ी करामात चाहिए। एक एक चीज इत्थे करामात है, एक एक दात दा इत्थे कोई जो है मुल नहीं, सा सिद्ध सा करामात है अचिंत करे जिस दा। जिहड़ी वस्तु वो दाता अचनचेत झोली च पा देवे बस ये करामात है।

शरीर नु तो लेने नाल मनते नहीं धोता जांदा। विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभा नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेल कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे। मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

0: किस हृदय नाम
1: वसाया,
0: सार संगत का पाछा
1: परे
0: जानो
1: नानक हर रस
0: पाया। पायो आनंद रहो
1: जा पाओ प्रभ को,
0: किस हृदय नाम वसाया,
1: साध संगत का
0: पाछा परे जान नानक
1: हर रस पाया।
0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: गुरु रूप साध सिंह जीओ सनेमल फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की पावन पवित्र वाक राग टोडी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का मूल जिहड़ा इस विच विशा प्रकरण चल रहा है, जीवन दे लक्ष्य नु समझे बिना जीवन व्यतीत करना व्यर्थ है। फिजूल है। जीवन का लक्ष्य की है, क्यों जी रहे हैं, जीवन क्यों है, बगौर मुतला करेंगे। किसी ने जीवन का लक्ष्य खाना पीना ही रखे है, एक साधन से लक्ष्य नहीं से। किसी के जीवन का लक्ष्य परिवार है, धन संपदा है, इस तो अगे अज तक मनुख दियां निगाहां नहीं गई, इत्थे ही रुकियां जाए, इत्थे ही रुकियां। तो साहब कहंदे ने यह लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह निशाना नहीं है, जीवन का यह घर नहीं है। जिहड़े जिहड़े लक्ष्य बनाए ने यह तो साधन ने, साधन लक्ष्य समझ ले तो कुदरती गल है, जब साधन ही लक्ष्य हो गया फिर लक्ष्य तो असल में भूल जाएगा, भूल जाएगा। तो लक्ष्य होने आया, लक्ष्य भूले होया, इसे वास्ते अवतारी पुरुष कहते ने याद करो किसनो लक्ष्य नो। लक्ष्य की है परमात्मा, लक्ष्य की है ईश्वर, यह भूले होया। करीबन करीबन सारी कायनात नो भूले होया, होया कोई करोड़ों विच एक अद मनुख नू लक्ष्य का पता, लक्ष्य की समझ है, बाकियां नू नहीं है। जिस जिसनू भी लक्ष्य का बोध नहीं है, महाराज कहिंदे ने उहदा संसार ते आना व्यर्थ है, फिजूल फिजूल जी रहे है, व्यर्थ जी रहे है। इस तरह इस विचारधारा नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आरंभ करते ने, मैं अर्ज करा सार्थक है उस मनुख का जीवना जिनू लक्ष्य की समझ है कि जीवन लक्ष्य की तरफ जा रहे है। लक्ष्य की कोई समझ ही नहीं है, कि जब समझ ही नहीं है तो फिर जीवन उस पासे नहीं जा सकता। चंगे चंगे जिन्हां नूं असीं सतसंगी कहिंदे आं, प्रेमी कहिंदे आं, नितनेमी कहिंदे आं, इन्हां दे वी जीवन दा लक्ष्य परमात्मा नहीं है, नहीं। इन्हां ने वी साधन नूं ही लक्ष्य समझिया होया है, ते किसे हद तक जो लक्ष्य परमात्मा है इन्हूं साधन दी तरह वरतदे ने, ते हे प्रभु तू ऐ करी, तू ऐ करी, तू ऐ करी, यह नहीं कि हे प्रभु तू मिले, ਉਸ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਫੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰ ਉੱਠਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁਆ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਸਿਆਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੂੜ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਮੰਗਣ ਹਾਰ ਇਆਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਆਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਾਦਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੰਮਾ ਮੰਗਣ ਹਾਰ ਇਆਣਾ, ਇਆਣੇ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿਡੌਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ

अंतम क्रिया देखने एक ही कर देने, ये लोक की कर देने। मैनू कहन लगे मस्कीन जी, अज अंतम क्रिया नहीं आनी, उते भी पंजे दिन मुर्दा घर विच रहेगा, ते भी पच्ची दिन घर विच बैठक चलती है सवेरे ते शाम, बिरादरी दे बंदे आउंदे ने। फिर भी पच्ची दिन उन्होंने सवेरे शाम अच्छे तो अच्छा पकवान खिलाया जाता है, जो ब्याह शादियां च भी नहीं आता, इस वास्ते मरण ते खर्च ज्यादा है। और उन्होंने पुरोहित पंडित कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ गाते रहते हैं, लोग आते हैं, घंटा अद्धा घंटा बैठते ने, चले जाते ने, खाते ने, पीते ने, चले जाते। मैं कह मैं देखना है, जिथे गए वो कम से कम 11 दिन हो गए सन घर मुर्दे नू रखिया, पर जब मैं देखिया तो दंग रह गया, इंज लगता सी जिवें सुत्ता पे, सुत्ता पे, ना कोई चेहरा कुमलाया होया, ना कोई हाथ पैर कुमलाए होए। मैं कह हद हो गई, 11 दिन हो गए ने गुजरिया, ये तो इंज लगता जिमें सुता पे। एक अजकल धंधा है, ऐसे कैमिकल्स मुर्दे के अंदर पा दिते जाते हैं, इस ढंग का संवार दिता जाता है, शिंगार दिता जाता है, इंज लगता जिमें सुता पे। यह घटना भी याद आ गई है, कह गया सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह हूं तो नहीं रहे, हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, इन्हों के रिश्तेदार कोई बेगोवाल रेंदे सन। वह नौजवान किधरे जर्मनी काम करता से, हादसे चलाना कर गया, तो 3 महीनों बाद लाश आई इत्थे। उन्हां दे नज दास इत्थे कथा कर रहा से, फिर मैनू बजुर्गवार सिंह साहब कह लगे चलना है। मैं कि ठीक है चलने, पर जब मैं उन्हां कोल सुनिया 3 महीनों बाद लाश आई है, तो मैं क्या रहा की आना है 3 महीनों बाद लाश आई है। बेगोवाल गए पहुंचे, जिस बक्से च लकड़ दे बक्से च वो लाश आई, सारियां दे सामने जब इकट्ठ होया, खोली गई, मैं भी उत्थे मौजूद, ते मैं के हड्डियां दे दर्शन होणगे, और की होवेगा, सड़िया होया मांस होवेगा, और की होवेगा, गलियां होईयां आंदरां होणगियां, और की होवेगा। पर नहीं, जैसे बक्सा खोले गया इंज लगदा सी जिवें सुत्ता सी 3 महीने बाद। पर बक्से दे खोलदे आ, हवा दे लगदे आ, तो मुरझाण भी लग पिया, चेहरे की रौनक आहिस्ता आहिस्ता जान लग पे। मुख्तसर अर्ज ये करा, सारी दुनिया दे एशिया दे यूरोप दे अमेरिका कैनेडा दे एक धंधा है, और एदी बड़ी वड्डी फीस लई जांदी है, जितना ज्यादा शिंगारना है उतनी ज्यादा फीस देनी पे, जितने ज्यादा दिन रखना है उतनी ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। मुर्दियां नूं शिंगारण का धंधा है, ते जब मुर्दा शिंगारिया जाता है इंज लगता है जैसे जिंदा हो रहा है। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कुछ अगे की गल करते हैं, महाराज कहते हैं लक्ष्य नूं समझे बिना ते लक्ष्य की प्राप्ति कीते बिना हर मनुख जिंदा नहीं मुर्दा है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लाशां चिता ते चढ़िया हुई ने, कुछ लाशां चलदियां फिरदियां, कुछ मुर्दे कबरां दे पए ने, कुछ मुर्दे घरां च बैठे ने, दुकानां ते बैठे ने, कुछ मुर्दे कब्रिस्तान दे च ने, कुछ मुर्दे बाजारां दे च घूम रहे ने। मुर्दे जरा शिंगारे हुए ने, संवारे हुए ने।
और गहन है। सिर्फ तन दे तल की जिंदगी दिखाई दे रही है, अंदरों मन मुर्दा है। हुण मैं अर्ज करा, मुर्दे नूं जिवाणा बड़ा औखा है। मन नूं जिहड़ा मुर्दा आख्या गया है, वह इस तरह गूढ़ी नींद, जिवें आम कहिंदे ने नींद ते मौत बराबर है। मौत भी संबंध तोड़ देंदी है, नींद भी संबंध तोड़ देंदी है। मन सुत्ता पिया है परमात्मा दे प्रति, इस वास्ते कहिंदे आ मुर्दा है। पर यह मुर्दा जिंदा हो सकता है, इनू जवाया जा सकता है, इनू जिंदा किया जा सकता है, इनू उठाया जा सकता है। कीर्तन दे राहें, कथा दे राहें, सत्संग दे राहें जैसे लक्ष्य की समझ आएगी, ये फिर लक्ष्य की प्राप्ति तो बिना रहेगा नहीं। हुण मैं फिर दोहरा दिया, इस सत्संग का फल की है, लक्ष्य की समझ आ गई है। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, गुरु है। समझ आ गई, सत्संग का फल मिल गया। ये मनुख हुण जप तप कीते बिना रहेगा नहीं, ये मनुख हुण साधना लई वध तो वध समां कढ़ेगा। यह मनुख हुण जप तप लई बहुत वड्डा समां कढ़ेगा। लक्ष्य की समझ नहीं आई तो महाराज कहिंदे ने फिर मुर्दे ही ने। ये मुर्दे जरा चलते फिरते ने, कदी घर दे चाहुंदे ने, कदी बाजार दे चाहुंदे ने, कदी दुकान दे चाहुंदे ने, कदी फैक्ट्री दे चाहुंदे ने। सब चलदियां फिरदियां लाशां, महाराज ऐसा कह रहे ने। और भी ऐसा फरमान करदे ने, नाम बिना जेता व्यवहार। गुरु अर्जन देव जी, नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मेरे तक मिथ्या सिंगार। सारा हार शिंगार मुर्दियां का सिंगार, मुर्दे शिंगार है। कब्रिस्तान दे शायद इतनियां कबरां ना होवन जिन्नियां चलदियां फिरदियां कबरां दिखाई दे। कुछ भी नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं। जरा फोल के वेख लेना, सिवाय मुर्दमी तो होर कुछ भी नहीं निकलेगा, सिवारे रोने पिटण तो होर कुछ भी नहीं निकल। खोल के देख लेना। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, हर मनुख ने पता न कितना रोना छुपाया होया, कितना दुख छुपाया होया। ये हसदे मुस्कुरांदे चेहरे पता नहीं कितना रोना छुपाई बैठे, ये चमकदे ते चुपड़े मत्थे कितना कलेश छुपाई बैठे ने। ये घरां दी खामोशी पता नहीं कितने भांबणा नूं छुपाई बैठी है। बस ये चलदियां फिरदियां लाशां, ये कबरां, ये शमशान घाट, महाराज इस तरह कहिंदे ने, भावें कितना शिंगारिया है, कितना साजो समान है, कितनी धन संपदा है, महाराज कहिंदे ने ध्यान नाल इस नूं विचारना है। मुर्दा शिंगारिया है, मुर्दा शिंगारिया जिंदा नहीं है। जिंदा ते तां हो सकदा सी, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई। नहीं जीवदा, बाकियां दे मन ते मरे हुए ने। इस मरे हुए मन नूं इस तरह लेना, क्योंकि तार्किक तर्क कर सकदा है, तन दे तल ते जो मर गया है जिंदा नहीं हो सकदा, नहीं हो सकदा। चलो मैं एक थानू घटना भी सुनावा। सिंगापुर दे च घटना घटी, एक चंगे धनाड दा नौजवान लड़का चलाना कर गया सिंह। यह घटना बड़ी मशहूर, इथों ही अमृतसर दे निकटों संत गए हुए सन, अपने आप नूं संत कहिंदे सन, लोकी मनदे ने। इस तरह दे संतां नूं ही संत आखिया जांदा है, मनिया जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह का बाणा से उतार के उन्होंने बाणा अपना दिता होया। उन्होंने कहा इसनों घर दे च रखो, शीशे दे बक्से च, अगले साल मैं आवांगा इसनों जिंदा करांगा।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਸੰਤ ਆਖੇ ਪਿਆ ਤੋ ਤਣਾਅ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਲ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਤ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਈਸਾਈ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਆਪ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਕਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਧਨਵਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਕੋਈ ਸੌ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੋਲ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਬਸ ਧਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਇਆਦਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਧੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।